0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक विचार विमर्श से साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। मंगलवार से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 9,99,000 फॉर्म्स वितरित किए जा चुके हैं। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए उपग्रह तकनीक पर आधारित पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंतकुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 8 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से राहत के लिए स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही ईंधन मिलेगा। नए दिशा निर्देश में 1 नवंबर से निर्माण गतिविधियां रोकने के साथ साथ सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल हैं। सरकार ने देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिन में यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। और खेलों में रांची पहली बार ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। फुटबॉल विश्व कप में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 में दोनों टीम का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए कांगो को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। अमरीका का मुकाबला बोस्निया और हर्जोगोविना से हो रहा है। ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वें संस्करण की शुरुआत इस महीने की 25 तारीख को कोलकाता से होगी। टूर्नामेंट के अन्य मुकाबले रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। और अंत में क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। अगला मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।
2: आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले

हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वागुरु, हिम्मत है भगवान।

मेरे संग डोल दे, दुनिया है गोल, दिल में बस जाने दे मुझको, दिल के सब दरवाजे खोल।

0: ट्वेंटी मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं

0: नैनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने

0: ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. and in men's

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमापार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. Earlier today, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on the 29th of last month with its publication in the Gazette. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: The Delhi Police Special Cell has arrested four accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and arms network. Police said the accused were planning to carry out a terror activity in the national capital on instructions of ISI handler Shahzad Bhatti and his associates. During the operation, two foreign-made pistols, 9 live cartridges and 5 mobile phones were recovered. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu this morning. The 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on August the 28th. In Ukraine, 11 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kyiv as part of a broader wave of Russian overnight attacks. Local media reported that several explosions were heard across parts of the city overnight into Thursday. Air raid sirens sounded across the city and many residents took shelter in metro stations. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. Refreshing showers in the national capital provided much relief from hot and humid weather. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Youri Tielemans scored a 125th minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002 this morning. And with that, we end this news bulletin.

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 12:10 हुए हैं और अब हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण।

सनक भाई, आज के इस प्रसारण में हाजिर हूँ मैं ब्रजभवन प्रसाद, आपके लिए ढेर सारे गीत और संगीत लेकर। लेकिन कार्यक्रम का आगाज करने से पहले प्रस्तुत है इसकी संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम आज का गीत और 12:38 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम है जिंदगी पुकारती। 1:05 पर आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार।

आज के प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम होगा गीत रंगीले, जिसे आप सुन पाएंगे दिन के 2:30 बजे से, और इसके साथ ही आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त रूपरेखा, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का ये पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म अकेली से, आवाज सुनिधि चौहान की।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जवान से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह, शिल्पा राय और साथियों की।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लापता लेडीज फिल्म का गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल, नेतांशी गोयल और साथियों ने।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जवानी दीवानी फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

कल शुक्रवार है और हर रोज की तरह हमारा कार्यक्रम शुरू होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 12:30 बजे दैनिक कार्यक्रम आज के गीत और 12:38 का समय होगा भक्ति मूलक गीतों पर आधारित कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन का। 1:05 पर रिले किए जाएंगे अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सबरंग और 1:40 से आप सुनेंगे तरन्नुम। दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार और कल का प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम होगा गीतिका जिसे आप सुनेंगे दिन के 2:30 से और इस कार्यक्रम के साथ ही कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी और आइए अब आपको सुनवाते हैं है जिंदगी पुकारती। सनी भाई, हम अक्सर कल की चिंता में आज को जीना भूल जाते हैं, कभी नौकरी का टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन, लेकिन जिंदगी इन सबसे बहुत बड़ी है। इन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। तो आइए आज का दिन हम जीते हैं गीतों के साथ। और पहला गीत हमने लिया है फिल्म शोर से, आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की।

सनी भाई, जिंदगी किसी चाय की प्याली जैसी होती है, सामग्री वही होती है, बस आप इसे कितनी फुर्सत से और मिठास से बनाते हैं स्वाद वैसा ही होगा। तो आइए ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म अपनापन से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

अगला गीत सुनिए सुमन कल्याणपुर की आवाज में, फिल्म का नाम है जहां प्यार मिले।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाई, आपसे हमारा यह कार्यक्रम आप डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर। और हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम स्वर छाया।

सनक भाई, आज अगर हम किसी से पूछें कि आपने आखिरी बार खत कब लिखा था, कब पढ़ा था, तो अधिकांश लोग बगले झांकने लगेंगे। आज के इस डिजिटल दौर में जहां व्हाट्सएप और ईमेल ने जगह ले ली है, वहां वो कागज की खुशबू, वो स्याही का बिखरना और डाकिया के आने का इंतजार कहीं खो गया है। खत जो लिखा मैंने इंसानियत के पते पर, खत जो लिखा मैंने इंसानियत के पते पर, डाकिया ही मर गया शहर ढूंढते ढूंढते। खत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होते थे, उनमें लिखने वाले की धड़कन और पढ़ने वाले की मुस्कान छिपी होती थी। चलिए यादों के इस सफर को शुरू करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जिसने सरहद पार बैठे अपनों की तड़प को हर दिल तक पहुंचाया।

आज भले ही लोग प्यार का इजहार करने के लिए फूल लिए सड़कों या पार्कों में घूमते हैं, लेकिन आइए आपको उस दौर में ले चलते हैं जब लोग प्यार के फूल भी खतों में छुपा कर भेजते थे।

चिट्ठियों का भी अपना एक दौर था। कभी फौजी भाई का खत आता तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती, और वो प्रेम पत्र जो किताबों के बीच छुपा कर दिए जाते थे, जिनमें शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती थी। आज की पीढ़ी शायद उस बेसब्री को न समझ पाए जो खत के जवाब के इंतजार में होती थी। हफ्तों का वो इंतजार, हर रोज डाकिया के साइकिल की घंटी सुनना, वो भी एक खूबसूरत इश्क था। इसी तरफ और खूबसूरत इंतजार को बयां कर रहा है हमारा अगला गीत।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत। तो आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोकगीत, आवाज समंदर खान की।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं असमिया फिल्म गाने की यानी कहिया गीत। आवाजें हैं जुबिन गर्ग और परिणीता बर ठाकुर की।

0: इस गीत के साथ ही प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अभी दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और 2:15 से रिले किया जाएगा दोपहर समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India-Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: The Prime Minister also informed that in the field of defense today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
2: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
1: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 marks a major step towards ensuring employment, strengthening rural livelihoods and accelerating the development of villages across the country. Union Minister for Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, has said. Union Minister Sri Shivraj Singh Chauhan, along with Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, today launched the VBG Ramji Act at Mukhavadipalle village in Tirupati district of Andhra Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Chauhan said the scheme aims to ensure that no poor labourer remains without work and that every hand gets employment. He thanked Prime Minister Narendra Modi for introducing the scheme and said employment under the programme has been enhanced from 100 days to 125 days.
3: Under Manrega, workers used to get employment for only 100 days. But under the Viksit Bharat Ji Ramji Yojana, laborers will receive employment for a full 125 days. In the very first year, the center's contribution to the scheme amounts to 95,600 crore rupees, with the states contributing their 40% share. A total of 1,51,282 crore rupees will be spent in just 1 year. 282 crore
1: rupees. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today underlined that the government is promoting ease of living while ensuring environmental protection through policies that balance development with sustainability. Addressing a national conference on electric mobility, Mr. Yadav said the government's approach reflects Prime Minister Narendra Modi's vision of ensuring that ecology and economy grow together. He highlighted that despite rapid industrial development, the country's forest cover has increased from 7,1673 square kilometres in 2014 to 7,15,000 square kilometres. The Election Commission today announced the schedule for by-elections to three Legislative Assembly constituencies across Bankipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. The polling will take place on the 30th of this month and the counting of votes will be conducted on the 3rd of next month. The National Rain-Fed Area Authority-funded Wild Rice Conservation Project has achieved a major milestone in Assam. The Borjuli site in Sonitpur district has been notified as a biodiversity heritage site by the National Biodiversity Authority under the project. The project, titled In Situ Conservation and Management of Wild Rice, Oriza Rufipogon, in Sonitpur district of Assam, aims to protect wild rice in its natural habitat. The recognition is an important step towards conserving India's rich wild rice diversity and promoting climate-resilient agriculture. Minister of State for Home Nityananda Rai today attended the flagging ceremony marking the success of the Mount Everest and Mount Lhotse mountaineering expeditions by the Border Security Force BSF, Indo-Tibetan Border Police and National Security Guard in New Delhi. Speaking on the occasion, the minister said by conquering the world's highest peak and singing Vande Mataram to the skies, the all-women mountaineering team of BSF has set a rare example of grit, patriotism and dedication. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. India's long-standing proposal for the Comprehensive Convention on International Terrorism has received renewed support at the United Nations General Assembly. The ninth review of the UN Global Counter-Terrorism Strategy, adopted by 140 votes, has urged member states to make every effort to finalize the convention proposed by India over three decades ago. Addressing the UN General Assembly, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said the absence of a universally agreed legal framework weakens global counter-terrorism efforts. He stressed that there should be no double standards in tackling terrorism and called for holding perpetrators, financiers and sponsors accountable. He added that a terrorist is a terrorist and emphasized that counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
4: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: The first batch of 4,822 pilgrims for the annual Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off by Lieutenant Governor Manoj Sinha from the Bhagwati Nagar Yatri Nivas base camp in Jammu today amid elaborate security arrangements. Pilgrims from different parts of the country have been arriving in Jammu to take part in the sacred pilgrimage. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. Refreshing showers in the national capital provided much relief from hot and humid weather. The weather department has forecast thunderstorms accompanied by rain over many parts of the national capital during the day, with generally cloudy skies expected to prevail. A yellow alert has been issued for parts of western and central India for heavy rainfall. People in Uttar Pradesh got much needed relief from the scorching heat as the monsoon arrived in the state, with almost all parts of the state witnessing rainfall. A report.
5: The southwest monsoon officially entered Uttar Pradesh on Tuesday, with the monsoon trough passing through Azamgarh, Bareilly and Ayodhya districts. Several parts of the state recorded moderate to heavy rainfall over the past 24 hours, bringing much needed relief from the prolonged heat. Sultanpur, Muzaffarnagar, Badayun, Saharanpur and Sambhal witnessed very heavy rainfall, disrupting normal life in some areas while significantly bringing down daytime temperature. The rainfall has come as a major relief for farmers who had been anxiously waiting for the monsoon, as paddy sowing was already running behind schedule. The meteorological department has forecast heavy rainfall in many districts today and said that weather conditions remain favorable for the further advance of the southwest monsoon across the state. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: Heavy rainfall continued across Maharashtra for the second consecutive day today, disrupting normal life in several parts of the state. More from our correspondent.
6: According to the IMD, Konkan and adjoining Ghat areas of central Maharashtra are likely to receive heavy to very heavy rainfall, with extremely heavy rainfall at isolated places. In Mumbai, heavy showers inundated low-lying areas, slow traffic and disrupted suburban train services on some routes. The Pavai Lake has started overflowing following continuous rainfall. The University of Mumbai has cancelled examination schedule for today for colleges in Palghar district and under the Panvel Municipal Corporation. Schools in Palghar and in Raigad, some talukas including Alibag, Panvel, Uran, Srivardhan, Masla, Tala and Polatpur have also remained closed today as a precautionary measure. Fishermen have been advised not to venture into the sea. Nivedita, AIR News, Mumbai.
1: A powerful storm swept across Romania's capital Bucharest and 20 counties yesterday, leaving one person dead and causing widespread damage. Emergency services said nearly 2,000 calls for assistance were received in Bucharest alone, where several metro stations were flooded. The storm also affected around 60 towns and villages outside the capital, damaging dozens of homes and vehicles. In Ukraine, 13 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kiev as part of a broader wave of Russian overnight attacks. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002 this morning. They defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
7: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए श्री मोदी ने कहा भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी
7: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा तीन दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
4: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
8: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
7: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बारताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
9: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
7: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ

0: हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।

इस गीत के साथ ही गीत रंगीले कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ब्रजमोहन प्रसाद को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल, और आज के हमारे इस खास फोन इन कार्यक्रम का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज इस विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राखी मेहरा और डॉक्टर विनोद कुमार यादव, जो CGS नई दिल्ली में आयुर्वेद में CMO हैं, और डॉक्टर राखी मेहता आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राखी और डॉक्टर विनोद, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार जी।
1: अगर आपके मन में भी है अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल, तो उठाइए अपना फोन और पूछिए हमसे इस नंबर पर। सवाल जो है 011-2342-1080 और 011-2342-1082। और हाँ, आप व्हाट्सएप नंबर 9868-1070 पर भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन एक इस प्यारे से गाने के साथ।

0: डॉक्टर साहब, आपको ये गाना कैसा लगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाना है।
0: तो श्रोताओं, आपको भी गाना जरूर पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और अगर अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कीजिए ना फोन हमें। हमारा नंबर है 01123421080 और 01123421082, और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं 9868107070 पर। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आखिर इम्यूनिटी के बारे में जो हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में, तो सबसे पहले जानेंगे कि इम्यूनिटी है क्या?
1: देखिए, इम्यूनिटी जो है, इसको अगर सरल भाषा में हम समझे, रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमत्व, यानी शरीर में जो नाना प्रकार की व्याधियां हैं वो हम पे हमला करती हैं, लेकिन हमारे शरीर की क्षमता या उसकी रक्षक प्रणाली इस प्रकार की है कि उन व्याधियों से प्रभावित नहीं होती है और हम जीवन को पूर्ण रूप से, स्वस्थ रूप से जीवन को जी सकते हैं पूर्ण आनंद के साथ। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये दो प्रकार की होती है, जो माता से सीधे जन्म से आती है आपको, वह इम्यूनिटी होती है। जैसे कहावत होती थी कि माँ का दूध पिया है, तो वह इम्यूनिटी ही एक्चुअली में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आहार, विहार और जीवन शैली के द्वारा जो शारीरिक स्वास्थ्य और क्षमता को विकसित करते हैं, उससे भी शरीर एक प्रकार की क्षमता विकसित करता है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, मदद करता है।
0: तो ये अगर कहें डॉक्टर साहब कि हमारा शरीर जो है वो खुद ही एक डॉक्टर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जानकर हैरान होंगे कि शरीर को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन की प्रसन्नता है, आपका जीवन स्वस्थ है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी रहे हैं, तो शरीर अपना स्वतः डॉक्टर है, वो अपनी हीलिंग खुद ही करता है और एक प्रसन्न चित्त मन वाला व्यक्ति, उसकी इम्यूनिटी हमेशा बढ़ी रहेगी।
0: अच्छा, तो अगला सवाल डॉक्टर राखी आपसे कर ले कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आयुर्वेद की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है काजल जी। और इम्यूनिटी को तो पहले तो समझ लें कि आयुर्वेद में क्या है। है ना?
0: जी।
2: आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व बल एक है। व्याधि क्षमत्व मतलब जिससे व्याधि को रोका जा सके, और व्याधि रोग प्रति मतलब जो उत्पादक तत्व हैं उनको मतलब उसमें इंडल ना हो, ये वाली व्यवस्था है। ये चरक ने सोचिए आज से
0: जी
2: तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व ये एक श्लोक दिया है
0: जी।
2: अब उसका अर्थ अगर हम आज के दृष्टिकोण से देखें
0: जी,
2: तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इम्यूनिटी एक्चुअली बेसिकली जो कहा गया है कि इट्स अ वेरी सोफेस्टिकेटेड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपका
0: जी।
2: और वो रिस्पॉन्स भी क्या है कि उसमें मॉलिकुलर सिग्नल्स जो है वो आपको एक नेटवर्क के थ्रू ये आपको मैसेज देते हैं कि कोई भी जैसे एलर्जन आ गया, बाहर से कोई फॉरेन कंटेंट आ गए, या फिर आपको कोई पैथोजेंस है जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है आपके इन, और इसके अलावा जो अनवांटेड सेल्स हैं जैसे जो एबनॉर्मल सेल्स हैं जैसे कैंसर की सेल है, इन सब से लड़ने के लिए किस तरह से बॉडी जो है वो एक पूरी मतलब एक डिफेंस अपनी बनाती है, और उसमें सेलुलर लेवल पे भी है तो वो फिजिकल भी है, केमिकल। अब जैसे आप बोलोगे कि फिजिकल क्या है, तो फिजिकल में आपकी स्किन है ना, अंदर बहुत सॉफ्ट चीजें हैं, फिर है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर और भी सॉफ्ट आपके जो है टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस कुछ होती हैं, तो केमिकली जो अगर आप देखें कि आपका सलाइवा है, ये फिजिकल में सलाइवा भी आपका आएगा
0: जी।
2: अच्छा, आंखों से आंसू निकलते ये भी एक है ना। तो देखिए, भगवान ने आपको ऐसी ताकत दी हुई है, उसमें कुछ सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेस हैं, है ना, एक एनके होता है जो नेचुरल किलर होती हैं।
0: अच्छा,
2: और एक ये मतलब ये सारी इम्यूनिटी के साथ में आपको एक बहुत बड़ा ये योगदान है कि ये जो है ये सारी इननेट है, मतलब हमें खुद दी गई है।
0: हाँ।
2: प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे बॉडी में ये सब चीजें डाली हुई हैं, और इसी को अगर हम एडॉप्ट कर लें, एडॉप्ट मतलब क्या हुआ कि कुछ जो हम फाइट कर लेंगे और फाइट करने के बाद यदि हम फाइट नहीं कर पाते तो मेमोराइज कर लेते हैं, ताकि ऐसी चीजों को जो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, मतलब हमारी खुद की है या बाहर से आई हुई है जो हम पे अटैक करने वाली है हमारी सेहत पे, उनसे बचने के लिए। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस व्याधि क्षमत्व जो व्याधि का जो रोग का प्रादुर्भाव है वो ना हो पाए, और व्याधि हो गई हो तो उसको कैसे रोकें, ये इननेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी आयुर्वेद में चरक ने कितने दिन मतलब कितने सालों पहले कही थी। तो आपने कहा कि आयुर्वेद में उसके क्या है, तो उपाय तो बहुत हैं, अभी हम बताते चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इम्यूनिटी जो मैंने ये समझाने की कोशिश किया उससे ये समझ में आना चाहिए कि ये व्यवस्था पहले से ही ज्ञात थी। अब हम लोग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इससे कहते हैं धातुएं। धातुएं मतलब जिससे हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये धातुएं हैं। अब ये धातुओं में कौन से, इन सब का निचोड़ एक ले लो, ओज। ओज बोलते हैं ना कि आपका ओज कम लग रहा है, मतलब आपकी वाइटैलिटी ओवरऑल जो आपको एक जूस की जो जरूरत है वो अब आपका कम लग रहा है, आप बुझे बुझे से लग रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी इम्यूनिटी लो हो गई। मैं बहुत साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये लोग समझें कि हमारे अंदर कुछ सैनिक हैं, लेकिन उन सैनिकों को हम मजबूत कैसे दें। इसीलिए आयुर्वेद की जीवन शैली, इसीलिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये जो कहा गया है, इन सब के साइंटिफिक रीजन हम एक के बाद एक लेते चलते हैं।
0: तो डॉक्टर विनोद आपसे जानना चाहेंगे कि ये ओज या ओजस ये कॉन्सेप्ट क्या है।
1: देखिए, ओज या ओजस ये वैसे हृदय में अष्टबिंदुआत्मक की इस मात्रा में रहता है, लेकिन जैसे मैंने बताया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, ये उत्तरोत्तर हमारे आहार जो हम खाना खाते हैं वो कितना पौष्टिक है, उससे जो रस धातु यानी उससे जो आहार रस मिलता है वो धीरे धीरे एक एक धातु की पुष्टि करता है, और जैसे जैसे पुष्टि करता है तो अंतिम धातु जो शुक्र धातु बनती है, उसके बाद एक फाइनेस्ट मटेरियल बनता है ओज धातु, जिसका स्थान हृदय में है।
0: अच्छा।
1: और उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है।
0: अच्छा।
1: जो आपकी शारीरिक क्षमता, व्याधि क्षमता, रोगों से लड़ने के लिए पूरा मैकेनिज्म को बूस्ट करना, तो वो ओज धातु से प्रतीत होता है।
0: जी, जी।
1: और आपके स्वास्थ्य का ये पैमाना भी अच्छा बताता है।
0: अच्छा।
1: तो ओज धातु का बड़ा महत्व है।
0: तो डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आ रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं कि लंदन का इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या महत्व है, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर अनिल कालरा गुरुग्राम से।
1: जी देखिए, लंदन में जो हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि आप लंदन क्यों कराते हैं, लंदनम आदव चिकित्सा, यानी पूरी चिकित्सा का जो प्रथम पाद है, मतलब पहला पांव है, वो है लंघन कराना।
0: अच्छा।
1: तो लंघन क्यों कराएंगे, जब शरीर में दोषों की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी, आम दोष की अवस्था होगी, तो देखिए बिना किसी औषध के आप शरीर के दोषों का पाचन कराने के लिए लंघन करा दीजिए। लंघन 3 से 7 दिन तक आप करा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: लंघन में जैसे हम लोग सुखोष्ण जल, उष्ण जल में रखते हैं, ठीक है, कि कुछ नहीं करिए, केवल पानी पीजिए, ठीक है, गर्म पानी पीजिए, धीरे धीरे आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होकर शरीर के जितने कचड़े को है वो पाचन करा देगी।
0: जी।
1: और अग्नि उद्दीप्ति होने के बाद आपकी पूरी शरीर की फैक्ट्री एकदम से चलने लग जाएगी।
0: जी, जी।
1: तो इसलिए लंघन कराने से आपको सबसे बेसिक लाभ होता है। इसलिए हमारे यहाँ उपवास किए, व्रत की प्रथा चालू की गई कि लोग जो रूटीन में खा रहे हैं तो एटलीस्ट एक दिन व्रत में उनके मन की स्थिति भी अच्छी होगी, शरीर की भी स्थिति होगी, तो लंघन उसका इस रूप में आप समझ सकती हैं।
0: जी, जी।
1: तो लंघन कराने से बहुत फायदा होता है चिकित्सकीय दृष्टिकोण से, और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, और इन सब के मूल में आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए।
0: जी, तो ये इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर राखी आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर ने जो बताया कि ये लंघन की प्रक्रिया और पानी का इसमें बहुत महत्व होता है, तो पानी को लेकर ऐसा है कि पानी हमें कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए?
2: देखिए ये सब जो है ये अपनी सबसे पहले प्रकृति जाननी जरूरी है। अच्छा। कि आप कौन से प्रकृति के हैं।
0: हाँ।
2: यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो दोषों का क्या बैलेंस है
0: जी।
2: तो उसमें हमारे वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, या संयुक्त है, या दो दोष ज्यादा है, तो ये जानने के लिए आप किसी निकटतम आयुर्वेद चिकित्सक से अपनी प्रकृति का परीक्षण करा लीजिए। उसमें साफ ये बता देंगे कि क्या खाना क्या ना खाना आपके लिए बेहतर होगा, क्या करना क्या ना करना आपके लिए बेहतर होगा। आपने कहा था कि जैसे ये लंघन बेसिकली क्या है कि एक जो गट्स है ना हमारे, जो अगर मॉडर्न साइंस से भी देखे तो गट के जो इंटेस्टाइन है, मतलब गट में जो हमारे मेसेंट्रिक्स जो नोट्स हैं, साथ में प्रेयर्स हमारी जो वो है नोट्स, इन सब में आपके जो है वो जो इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स जरूरी है वो वहां पे है। अब वो कैसे खराब हो रही है कि आपने खाना में कोई अपने कंट्रोल किया नहीं, जो पचा नहीं फिर खा लिया, तो हमारे यहां सब लिखा है कि बिना खाया मतलब अनशन, अति मतलब बहुत ज्यादा खा लिया, और अध्य मतलब जो पहले वाला पचा नहीं और फिर खा लिया। तो ये सबसे होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये सब हमारे यहाँ अगर अनपचा हुआ खाना रखा
0: जी
2: तो उसको कहते हैं आम। आम ये मैंगोज नहीं, आम मतलब अपको, जो मतलब जो अभी मेटाबोलाइज नहीं हुआ है।

0: एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है और रस धातु रक्त धातु में नहीं हुआ है
1: जी।
0: अब आपने कहा कि लंघन, तो लंघन देखिए मतलब आपने अपने शरीर को खाने से वंचित रख रहे हैं, उसके अलग अलग पैटर्न है
1: जी।
0: कितना रखना है, एक बार रखना, दो बार रखना, हाँ। तीन बार और रखना
1: जी।
0: कि केवल अन्न त्यागना या केवल पानी पे रहना या दोनों ही त्यागना, ये सब आपकी बॉडी के जो टेम्परमेंट है और आपकी स्थिति जो है उसको चिकित्सक परीक्षण करके लंघन कराता है।
1: अच्छा,
0: ये जो नॉर्मल उपवास आपने आज रख लिया और कुट्टू की रोटियां खा ली और ये कर लिया, तो ये लंघन नहीं है।
1: अच्छा,
0: लंघन एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जो आम पाचन के लिए किसी भी पंचकर्म के पहले कराया जाता है।
1: अच्छा,
0: अब पंचकर्म क्या है, शरीर की शोधन की एक प्रक्रिया है
1: जी। पंचकर्म पर तो बहुत सारी बातें हम करेंगे
0: नहीं, पर आपको ये जानना जरूरी होगा कि रस धातु में अगर आम है तो वो रक्त नहीं बना रहा।
1: अच्छा अच्छा,
0: रक्त में है आम तो आपको इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आपका सीआरपी बढ़ गया, आपका जो है इंटरफेरॉन, मतलब जितने भी आपके जो इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं वो लो हो गए
1: जी।
0: तो आम जो है वो सब स्रोतों अवरोध करता है, हमारे स्रोत के
1: अच्छा,
0: जिसके चैनल से एब्जॉर्प्शन होता है, फाइन टिश्यूज जो है हमारे जो रस जिनको वो ले करके आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, वो नहीं हो रहा।
1: अच्छा,
0: तो वो रुक, ये सुनिए आपको लग रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए कि एक पैसेज है बॉडी का, उसको ब्लॉक कर देंगे।
1: अच्छा,
0: तो सर्कुलेशन वहां तक कैसे पहुंचेगा ये तो सबको मालूम है
1: जी,
0: है ना, नंब हो जाएगा
1: हाँ,
0: है ना
1: हाँ, हाँ,
0: तो आप उस चीज को समझिए कि जो पोषक तत्व जहां तक पहुंचने वो नहीं पहुंच रहे, तो अवरोध हो गया, तो अवरोध हो गया, उस आम को हटाने के लिए लंघन श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन चिकित्सक के निगरानी में। अब आपने पूछा कि पानी कैसे है
1: जी,
0: तो पानी का भी वही है, मैं एक गिलास पीती हूँ, आप दो गिलास पीते हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, 70% जो है वो बॉडी वाटर मांगती है, अगर वो हट रहे तो आपके वाटर से ही इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है जिसके कारण आप स्वस्थ हो। जरा भी आप देख लीजिए, सोडियम बढ़ा दीजिए या कैल्शियम, ये पोटेशियम बढ़ा दीजिए, या तो आपके सेल्स के ऑस्मोसिस है ना, उस सब आपकी जो है वो डिप्राइव हो जाएगी।
1: अच्छा,
0: और इसीलिए कहा गया है कि पानी जितनी भी सेल्स में, क्योंकि वो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इतनी पतली है कि उसमें जली उससे ही ये आर पार हो सकते हैं
1: जी,
0: और
1: जी।
0: इसी से सिक्रीशंस ब्लड जो है वो आपको पोषण सारे बॉडी के पार्ट में पहुंचाता है।
1: अच्छा,
0: तो उसको लिक्विड रहना, कितना
1: जी, जी।
0: बहुत पतला भी खून ठीक नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, मालूम है ना
1: जी, जी, जी।
0: तो उसी तरह पानी पीने की व्यवस्था है, ये गलत फहमी है लोगों को कि गर्म पानी पियो कि ठंडा पानी पियो कि फला पियो कि खाने के पहले पियो कि खाने के, ये सारे नियम आयुर्वेद में लिखे हैं कि खाने के बाद किस प्रकृति वाले को पीना चाहिए और खाने के पहले किस प्रकृति वाले को और कितना पीना चाहिए, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है कि 8 से 10 ग्लास एक बार में पानी पीना चाहिए, लेकिन एक इकट्ठे नहीं पीने चाहिए, सिप सिप सिप करके पीना चाहिए, ताकि जो जो उसका पर्पस है ना कि बहाना रसाना वो चलता रहे।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक मैसेज ले लेते हैं, ये यशपाल शर्मा हैं जो द्वारका दिल्ली से हैं, इनका पूछना है कि हाउ हाइजीन इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, पीपल हु आर वेरी पुअर एंड लिविंग रोड साइड एंड नॉट फॉलोइंग प्रॉपर हाइजीन लाइफ स्टाइल एंड डिसिप्लिन, बट दे ऑल्सो हैव गुड इम्यूनिटी, हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव कैसे है कि जो रोड मतलब सड़क के किनारे जो रह रहे हैं जो गरीब लोग हैं तो उनमें इम्यूनिटी कैसे मजबूत होती है या?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है
1: इनका,
0: कि देखिए जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो फाइट कर लेते हैं
1: जी जी।
0: देखिए इम्यूनिटी केवल एक स्किन के थ्रू नहीं आ रही है, स्किन में जो बैरियर है
1: जी,
0: जो फिजिकल बैरियर है और स्किन में ही जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो आपके बाहर से आने वाले बैक्टीरिया पैथोजेंस है, केमिकल्स है, आपके जो फॉरेन बॉडीज है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है उसको रोकते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन गट मैंने कहा ना, गट में 70% जो है वो इम्यूनिटी के सेल्स हैं
1: जी,
0: तो वो जो जो जिनको रोड में जिनको साबुन नहीं है अपने शरीर धोने का तो उनको खाना भी उतना ही है
1: हाँ।
0: वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही खा रहे हैं
1: जी जी।

0: वो आपका हाथ को जरूरत नहीं है फिर भी आप धो रहे हो, लेकिन जब जरूरत है तब नहीं धो रहे हो। तो स्वच्छता कहाँ कब कैसे करनी है, देखिए हर चीज का एक साइंस है। टू मच हमारे यहाँ कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित और बिल्कुल बिल्कुल भी वर्जित है ना, तो और उल्टा सीधा और भी वर्जित।
1: हाँ, हाँ।
0: तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल कहा है कि सम दोष और समाग्नि, हर चीज सम इक्विलिब्रियम में रखिए।
1: हाँ।
0: तो प्रसन्न आत्मा भी रहे, मन भी रहे, इंद्रिय भी रहे और आप भी स्वस्थ हो
1: जी। डॉक्टर विनोद आपसे जानना चाहेंगे कि ये आयुर्वेद में टर्म है ऋतुचर्या, तो ये ऋतुचर्या क्या होती है, हमें कैसे पालन करना चाहिए और ये हमारे इम्यूनिटी में कितना प्रभाव डालती है?
2: देखिए प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, ये एक ऋतु जैसे हमारे 12 महीनों में हमारी 4 ऋतुएं हैं, जैसे आयुर्वेद में षड ऋतु मानते हैं, 6 ऋतुएं मानते हैं, पर ज्यादातर 4 ऋतुओं में हम समाहित करते हैं प्रभावों को। इन ऋतुओं में जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ शरीर किस प्रकार से सामंजस्य बिठाए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उसकी जानकारी नॉलेज इंफॉर्मेशन जो आयुर्वेद में दी है वो इतनी बेहतरीन है, वो सिर्फ आपके शारीरिक परिवर्तन पे ही बात नहीं करती है, वो आपके आहार पे बात करती है, आपकी लाइफस्टाइल पे बात करती है, इन सब चीजों में किस तरह क्रामिक परिवर्तन करें। जैसे मान लीजिए इस समय हम एक ऋतु की चर्चा करते हैं वर्षा ऋतु की, अब वर्षा ऋतु के लक्षण कैसे आएंगे, देखिए वर्षा ऋतु में हमारा अग्निमान हो जाएगा, यानी अभी अगर आप पेशेंट से हम लोग बात कर रहे हैं तो उनमें लक्षण आ रहा है कि भूख नहीं लग रही है, पहला लक्षण है। हाँ। इसका मतलब अग्निमान हो गया
1: जी।
2: दूसरा वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है।
1: हाँ।
2: या लूज मोशंस हो रहे हैं।
1: हाँ।
2: या घबराहट हो रही है
1: जी, जी।
2: ये सारे लक्षण प्रकृति में किन कारणों से आए, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, इन सब से मिला जुला होने की वजह से आप में परिवर्तन आए। अब आपको क्या करना है, आप तुरंत अपनी जो खाने को है उसको नियंत्रित कर लें, खाना शरीर को कम दे।
1: हाँ।
2: तो हमारी अग्नि पे लोड कम हो जाएगा
1: जी।
2: जब अग्नि पे लोड कम हो जाएगा तो ये आमाशय या पेट में आहार पाचन से जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें लूज मोशन होना, वोमिटिंग होना, इन सब में कमी आ जाएगी
1: जी।
2: तो बिना कोई दवाई के यदि आपने इतना परिवर्तन कर लिया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।
1: हाँ।
2: फिर क्या खाना नहीं है।
1: हाँ।
2: कोई जैसे कि वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से प्रकृति में वात का प्रकोप हो जाता है
1: जी।
2: तो वात के प्रकोप से रिलेटेड कोई भी चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी चाहिए। जैसे एक है जल में घुले सत्तू को वर्षा ऋतु में निषेध कहा है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि ये वायु का प्रकोप करके पेट में फुला देता है
1: जी।
2: तो इससे हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे आहार में तमाम ऐसी चीजें, जैसे गुरु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी भारी भोजन।
1: हाँ।
2: यानी वह भोजन जो पचने में बहुत समय लगाता हो, जैसे पनीर है, तमाम आपकी मिठाइयां हैं, इस तरह की चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें।
1: हाँ।
2: ये सब चीजें हमें बिल्कुल कम करना चाहिए। हल्का सुपाच्य, जैसे खिचड़ी खाएं, मूंग दाल की खिचड़ी खाएं, हरी सब्जियां आ रही हैं उनको खाएं, पत्तेदार सब्जियों को रहने दें। क्यों, वर्षा ऋतु में पत्तों पे छोटे छोटे कीड़े आते हैं।
1: हाँ हाँ।
2: तो उसकी वजह से हमको नुकसान ना हो तो पत्तेदार सब्जियों को हम निषेध करते हैं कि उनको मना करते हैं, और ऋतुजन्य फल और ऋतुजन्य सब्जियों का सेवन करें, उसी तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब अब सुन लेते हैं एक गाना।
2: हाँ, हाँ,
0: बिल्कुल ऋतु अनुसार
1: ऋतु अनुसार

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज का विषय है इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद। अगर आपके मन में भी आए अपनी सेहत को लेकर कोई सवाल है तो उठाइए ना अपना फोन और पूछिए हमसे इस नंबर पर जो है 0112342 1080 और 0112342 1082 और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868107070। अब अगला सवाल डॉक्टर विनोद आपसे पूछ लेते हैं
2: जी।
1: कि आयुर्वेद में आहार और जीवन शैली पर काफी जोर दिया जाता है
2: जी जी।
1: तो ये हमारी इम्यूनिटी को कैसे प्रभावित करता है और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि पंचकर्म क्या है।
2: देखिए अगर त्रय स्तंभ की हम बात करें
1: डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको रोकेंगे क्योंकि एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं
2: जी जी।
1: हेलो

0: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं।
0: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और पित्त मेरी प्रवृत्ति है
1: जी।
0: तो पहले तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: नमस्ते
0: जी। मेरे दो मित्र हैं और दो ही मेरे सवाल हैं। तो पहला सवाल मेरा यह कि किसी शख्स से यदि इसकी पित्त प्रवृत्ति है तो क्या उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, होती है? दूसरा मित्र कि जो लोग मैंने सुना है कि अगर माँ के दूध के अतिरिक्त गाय का दूध पिए या बकरी भैंस का दूध पिए या डाबर चंद्र प्राश खाए, सोना चांदी बैरना चंद्र प्राश खाए तो इससे भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ये कहाँ तक सही है? और तीसरा सवाल ये है मेरा कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि पहले दवाएं वो प्रोड्यूस वो करते इन्वेंट वो करती है, डॉक्टर के पास बाद में पहुंचती है वो, तो अगर वो अपनी दवाइयों का प्रचार प्रसार करती है मार्केट में तो क्या पेशेंट को डायरेक्ट दवाएं खानी पूरा सेवन कर लेना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस लेके वो दवाई खानी चाहिए? और चौथा अहम सवाल मेरा ये है कि ये खासतौर राखी मेरा मैम से मेरा सवाल है कि मुझे ना क्या है कि ये लीवर फैटी या अल्सर में से कोई प्रॉब्लम है और ये एलर्जी की प्रॉब्लम है, श्वसन एलर्जी, स्किन एलर्जी कुछ हद तक और निद्रा की प्रॉब्लम है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ क्या ये भी इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है क्या, और इसके लिए मुझे घर बैठे बैठे क्या करना होगा? और इसी में एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि जैसे अगर मैं ठंड में जाऊँ तो मेरी ज्वाइंट प्रॉब्लम बढ़ जाती है नेक में और हिप में, और अगर गर्म वातावरण में रहूँ तो उससे मुझे निजात मिलती है पर मेरी पित्त प्रवृत्ति भी है, तो इस असमंजस में हूँ मैं उसे ढूंढ में, मैं क्या करूँ? प्लीज गाइड करे, बड़ी मेहरबानी होगी
1: जी। राजेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि पित्त प्रकृति है आपकी, यानी कि आपकी जो है वो तीक्ष्ण अग्नि हम हो सकती है, और इसमें क्या है कि जो आपकी इम्यूनिटी जो रिस्पांस है वो भी बहुत फास्ट होता है, और इसी में एलर्जी है, ऑटो इम्यून डिजीजेज भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, क्योंकि TH1 और TH17 जो है वो टाइप के जो फिनोटाइप है वो IgE आपका CRP ये बड़ा हो सकता है, इसके चांसेस हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में यदि आपको प्रकृति पता हो तो आप उसको उससे होने वाले जो एक मतलब वो बाय नेचर आपको मिला है तो उसको आगे ना बढ़े और वो अलग रोग ना पैदा करें, इसीलिए व्याधि के जो उत्पादक तत्व हैं उनको रोकते हुए खानपान बताया जाता है, और आपकी व्याधि क्षमत्व प्रतिबल जो है, जो सहज बल है, कालज बल है, ये हमारे अलग अलग बल हैं, मतलब सहज जो आपको खुद का मिला हुआ है, का जो माता पिता से आपको प्राप्त हुआ है, आपकी इनबिल्ट जो आपके कॉन्फ़िगरेशन से मिला हुआ है, और कालज में आपके जो ऋतु है, दिनचर्या है, आपका कैसा खान पान है, आप सही फॉलो कर रहे हैं नियमावली आयुर्वेद की, तब आपको इससे तकलीफ नहीं होगी। तो आपने जैसा कहा कि ये आपको जो तकलीफ है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन ये नहीं है कि अब आपको वही झेलना है, आपको एक चिकित्सक को सलाह लेनी है, खुद मिलना है और अपना पूरा एक डाइट प्लान, और आपके लिए मैं आपको बताऊं जो पित्त प्रकृति है उनकी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी हुई तो साइटोकाइनिन जो ये एक इम्यूनिटी के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है ये फैक्टर, और ये आपका जो है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर होता है। तो नींद कितनी आप करते हैं, रात में इरिटेटेड रहते हैं या एसोसिएटेड और भी कोई बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप मिर्च मसाले बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण करके आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
4: अब हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो,
5: नमस्कार मैम।
4: नमस्ते, अपना नाम बताएं।
5: मैम बोल, नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते
5: जी, मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोही लोनी जिला का
4: जी। अपना सवाल पूछिए
5: जी। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ जैसे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं इनको वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, जैसे कि पैरों में दर्द वगैरह रहता है, तो थोड़ा सा हो जाता है वगैरह हो जाता है जैसे, तो इनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, तो इसमें हम जैसे कि घरेलू उपाय में क्या लें, जैसे कि काजू बादाम वगैरह ले लेते हैं, ये चीज लें या ना लें, किशमिश वगैरह, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं
2: किस चीज की तकलीफ है, किस चीज के कारण।

0: वीकनेस ज्यादा हो जाती है आपको।
1: हेलो, आप अपना सवाल दोहरा दें।
0: किस चीज से आपको वीकनेस,
2: हेलो,
0: किस चीज से आपको वीकनेस हो जाती है?
2: जैसे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर आप डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनमें जब डायबिटीज ज्यादा बढ़ती है तो ओज धातु की क्षीणता की वजह से ये मसल लॉस होता है, मांसपेशी में जो उसके पोषक तत्व हैं उनका लॉस होता है। उस लॉस को रिकवरी करने के लिए जो घरेलू उपाय कुछ हैं वो मैं बताता हूं आपको, जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे और तमाम डायबिटीज में होने वाली समस्याओं का। जैसे आप त्रिफला का नित्य सेवन करें, त्रिफला दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो रात में एक चम्मच यानी 3 से 6 ग्राम की मात्रा में पानी से लें, इससे आपका पेट साफ हो जाएगा, कोष्ठ शुद्धि होने से भी मधुमेह में आपको लाभ होगा। दूसरा, यदि त्रिफला को सुबह आप शहद से या पानी से लेंगे तो ये आपको रसायन के रूप में प्रयोग होगा जो आपकी व्याधि क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। दूसरा, आंवला का मुरब्बा जो शहद में बना हो वो भी आपके लिए फायदा करेगा। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग है, कच्ची हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप और सूखी हल्दी का पाउडर के फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको मधुमेह में लाभ होगा। इस समय वर्षा ऋतु में जामुन काफी आ रही है तो जामुन खाइए, जामुन के बाद उसकी गुठली निकाल लीजिए और उसे सुखा के उसको पाउडर कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा इसमें डायबिटीज में। और ये सारी चीजें आपकी जब रोग को कम करती हैं तो आपकी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक बढ़ाती हैं, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा एक पंचनीम चूर्ण भी आता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एंटी डायबिटिक के साथ साथ स्किन की कोई प्रॉब्लम है वर्षा ऋतु में उसमें भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके अलावा कुछ जो चीजें हैं जो बहुत बेहतरीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उसमें स्वर्ण का प्रयोग है, जैसे वसंत कुसुमाकर रस का हम लोग प्रयोग कराते हैं, जहां एक्सट्रीम डायबिटिक वीकनेस आती है वहां गोल्ड की प्रयोग करने की वजह से आपको तुरंत नर्वाइन वीकनेस में जो नसों की कमजोरी बताते हैं वहां पर बहुत लाभ होता है। तो आप इन सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, खान पान में थोड़ा मिठास का कम करके प्राकृतिक चीजें सीजन में उपलब्ध चीजों का प्रयोग करें तो आपको आपकी इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ेगी आपके रोग में भी कमी आएगी।
1: तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पंचकर्म के बारे में,
0: जी जी,
1: तो बताएं कि ये पंचकर्म क्या है?
0: देखिए पंचकर्म जो है एक तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पांच विधाओं की खोज की गई, जो इसका जो सिद्धांत था कि शरीर को सबसे पास के रूट से गंदगी को या टॉक्सिन्स को निकाल लिया जाए। जैसे कि मान लो आपके नाभि से ऊपर के हिस्से की टॉक्सिन्स निकालनी है अगर आपको, तो उल्टी करा के सबसे आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा। ये नॉर्मल उल्टी नहीं होती है, हम इसे वमन कर्म कहते हैं जो पहला कर्म है। और कफ दोष जो वात पित्त कफ है इनमें जो प्रधान दोष एक मेन दोष ऊर्ध्व भाग में ऊपर के हिस्से में कफ दोष रहता है, उसको बैलेंस में लाने के लिए हम स्नेह पान करा के उसको घी पिला के पेशेंट को तैयार करते हैं और फिर वमन कराते हैं।
1: अच्छा।
0: वमन की प्रक्रिया होने से आपका कफ और पित्त दोष दो दोषों पे हम अच्छा प्रभाव लाते हैं और शरीर को अच्छा है। इसके बाद आता है विरेचन कर्म, यानी नाभि से नीचे के हिस्से में जहां पित्त दोष प्रमुखता से होता है और वात दोष, इन दोनों दोषों को नियंत्रण करने के लिए हम विरेचन कर्म करते हैं। तो दोनों का क्रम है, पहले आप वमन कराएं फिर विरेचन कराएं। दूसरे में नस्य कर्म कराते हैं, बस्ती चिकित्सा वात की शांति के लिए कराते हैं और रक्त मोक्षण यानी ब्लड से संबंधित समस्याओं के लिए रक्त मोक्षण कराते हैं। तो इस प्रकार के पांच प्रोसीजर हम कराते हैं, अन्य पैरस प्रोसीजर्स भी हैं जो हम करा सकते हैं तो रोगी पे हम करा देते हैं।
1: जी जी, अब अगले कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं।
3: नमस्कार जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: नमस्ते,
3: मेरी उम्र है 70 साल की।
1: जी जी,
3: पहले तो बधाई आप लोगों की तरफ से कि बहुत अच्छा आप प्रोग्राम पेश कर रहे हो। आयुर्वेदिक की बहुत नॉलेज मिली है, क्या क्या चीजें मैं ध्यान से सुनने से।
1: जी जी शुक्रिया,
3: तीनों को तीनों आप बधाई पात्र हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ, तो मेरे को ये पूछना है कि कोई काढ़ा बना सकते हो आयुर्वेदिक उससे, जिससे कि
4: आपने अपना नाम क्या बताया?
3: रमेश
4: जी। रमेश जी, एक तो पहली बात है कि आप बीपी के हैं, तो कौन से टाइप का बीपी है, कितने रेंज में है, ये परीक्षण एक बार एक चिकित्सक से जरूर दिखा लें। और ये बहुत गलत धारणा है कि बैठे बैठे कोई काढ़ा अगर हम बता दें आपको, क्योंकि बहुत सारी औषधियां हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकती हैं। आपको कौन से उसकी जरूरत?
3: जी डॉक्टर साहब, ऐसा था कि जब कोविड वगैरह हुआ था तो काढ़ा के बहुत बहुत रेसिपी आती थी,
4: ठीक है जी जी।
3: हाँ, तो उसको मेरे को काढ़ा का पहले उस टाइम मैं बनाया करता था, वो मैं भूल गया, मिस्टेक हो गया। तो मैं चाहता हूँ आपको ऐसा काढ़ा वाला जिससे हम लोगों की इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो सकती है, बहुत इफेक्टिव था काढ़ा जहाँ तक मेरे को याद पड़ रहा है,
4: जी।
3: तो आप उसमें हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा।
4: जी जी, वो गिलोय का जो है वो हम लोग काढ़ा देते थे, उसका रोल अलग था। गिलोय की मात्रा और किस तरह से बनाना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं रिसर्च से कंसर्न हूँ इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी। जो नॉर्मल आप लोग तोड़ करके कुछ भी, जैसे हम लोग जरूरत पड़ने पे हम विष को भी अमृत बना लेते हैं, है ना, उसका संस्कार करते हैं। संस्कार यानी उसकी वो चीजें जो पॉइजनस है उनको हटा के कितनी मात्रा में, कितनी डोज में, किसके साथ, कब खाने के पहले बाद में, ये सारी व्यवस्था एक चिकित्सक दवाई जब यूज करता है ना तो इसका विचार करता है। और अगर हमने, मैंने ये बहुत सारे प्रयोग देखे थे जब काढ़े के बताया गया था, तो लोगों ने सारी गिलोय साफ कर दी और ले लेकर के उसमें कई चीजें उनको रिएक्शन भी हुई हैं। इसी तरह जैसे आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि तुलसी दल, दो तुलसी दल भी जो है सुबह अगर आपने पानी के साथ में उसको निगला तो भी अच्छा है, क्योंकि चबा चबा के नहीं खाते, वो भी एक दिक्कत है, लोग बोलते चबाने उससे भी दांतों का आपका इनेमल खराब होता है, उसके जो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो खराब कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप अश्वगंधा है, अश्वगंधा पाउडर को आप दूध के साथ ले सकते हैं, आपकी उम्र 70 साल की है और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना। तो कुछ चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा की कितनी मात्रा लेना है, क्योंकि अश्वगंधा कार्डियो प्रोटेक्टिव तो है ही, लेकिन कई बार बीपी को भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है। तो अगर कोई भी औषध ले रहे हैं, देखिए खाना और औषध में यही फर्क है कि खाना आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन चिकित्सक की सलाह से लोगे तो वो औषध बन जाएगा, और औषध जो है वो अपने हिसाब से लोगे तो वो नुकसानकारक जो है वो कहीं दवाई आपको और नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मेरी सलाह मानिए, एक चिकित्सक को दिखाना बनता है और उनसे एक बार अपना चार्ट बनवा लें और जरूर लें, लेकिन अश्वगंधा कितनी मात्रा में दूध के साथ में आप ले सकते हैं, ठीक है।
1: डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया सुधीर सिंह का जो कुतुबगढ़ से आया है, वो पूछ रहे हैं कि कुसुमाकर रस गोल्ड वाला कितने दिन तक खा सकते हैं, और ये मलाई के साथ ठीक रहेगा या शहद के साथ?
0: देखिए वसंत, कुसुमाकर रस जो है अपने चिकित्सक की देखरेख में प्रयोग करें, क्योंकि इसमें स्वर्ण जैसी औषधि होती है, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं प्रयोग कराते हैं, शरीर में जितने समय में इसका लाभ आ जाए और आपकी समस्या का निदान हो जाए उतने समय के लिए ही प्रयोग कराते हैं, लंबे समय के लिए इसका प्रयोग नहीं कराया जाता है। तो आप अपने चिकित्सक की देखरेख में इसका प्रयोग और उपयोग करें और इसका लाभ ले सकते हैं।
1: और हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो
5: मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्ते।
5: और डॉक्टर साहब सभी दोनों को नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
5: जी, मेरा नाम संजीव कुमार है, हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं। गांव कुखनिया, डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी।
0: बताइए।
5: अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब मैं 2002 से दिमाग की दवाइयाँ खाता हूँ, और मेरा छोटा भाई है वो 2009 से, उसको सिजोफ्रेनिया और मेरे को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, और अल्ट्रासाउंड में हमारा फैटी लीवर आया दोनों का, मेरा ग्रेड 2 है, भाई का ग्रेड 1 है। तो आप ये बताइए कि ये कैसे ठीक हो सकता है, और आयुष्मान कार्ड पे क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ मुफ्त में मिल सकती हैं सर कहीं से, जैसे दिल्ली वगैरह से कहीं से भी?
0: तो देखिए ये जो जहाँ भी ये स्कीम लागू है वहाँ क्या व्यवस्था, उसके हिसाब से आप लोकल स्थानीय स्तर पे इसको पता करें, ठीक है। दूसरी जहाँ देखिए दो समस्या है, आपकी एक लीवर की समस्या है जो ग्रेट

0: वन फैटी लीवर है, ये दोनों भाइयों का पूरी तरह ठीक हो सकता है। और जो आपने अपनी तकलीफ बताई, ये तकलीफ थोड़ा कठिन है चिकित्सा में, लेकिन अगर आप सही चिकित्सक के मार्गदर्शक में आप अपने औषधियों का उपयोग करते हैं आयुर्वेदिक और पंचकर्म का प्रयोग करते हैं, तो मानस रोगों में लक्षणों को काफी कम किया जा सकता है और आपकी स्थिति को बेहतर सुधारा जा सकता है। बाकी पूरी बात तो आपको चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए।
1: हाँ, लेकिन आप यहाँ पे त्रिकटु एक होता है हमारा, सौंठ पीपल और मिर्च के से मिले हुई दवाई एक होती है, आपको मिल जाएगी, वो आप एक चुटकी खाना खाने के पहले ले सकते हैं और दोनों भाई ले सकते हैं। आप ओसीडी वाले और आप जो दूसरे भाई हैं उनको भी, क्योंकि मेडिसिन जब बहुत दिन तक आप लोग खाते हैं तो उससे लीवर कहीं ना कहीं कुछ उसमें डैमेज होता है, तो लीवर को सपोर्ट करने के लिए हेपेटोप्रोटेक्टिव जितने भी दवाइयां हैं वो आयुर्वेद में बहुत बेहतर है। आप किसी चिकित्सक की सलाह से ये आप अपने लीवर को भी ठीक कर सकते हैं। जी
2: डॉक्टर साहब, एक नींद की समस्या जी। अभी स्ट्रेस, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब पर बात होनी चाहिए, लंबी बात होनी चाहिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत प्रभावित करते हैं जैसे, तो आयुर्वेद में इस से निदान पाने का और इम्यून सिस्टम मजबूत करने का और मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए?
0: देखिए, जो आयुर्वेद में तीन स्तंभ बताए ना स्वस्थ रहने के, उनमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, यानी निद्रा भी एक इतना बड़ा फैक्टर है। हाँ। अगर सबसे पहले कोई बीमारी आती है तो देखिए उस व्यक्ति की भूख डिस्टर्ब होगी और नींद डिस्टर्ब होगी। ठीक है, यदि एक व्यक्ति को सोने को सही प्रकार से नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से चिड़चिड़ा होगा जिसमें मानसिक लक्षण आएंगे। तो इन सभी समस्याओं में और नींद को सही से लाने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही सिंपल, सरल, सुरक्षित औषधियां हैं। कुछ तो आपके आसपास भी उपलब्ध हो सकती हैं। इनमें अगर कोई औषध भी नहीं खानी है तो आप पंचकर्म में शिरोधारा का उपयोग करें। शिरोधारा से बिना औषध के आपको निद्रा आ जाएगी। दूसरी है नस्य कर्म, जिसमें कि आपके नाक में औषधीय तेलों का प्रयोग करके आपको नींद को हम लाते हैं। तीसरा है कर्णपूरण, यानी अगर आप कान में तेल डालेंगे, क्योंकि कान वात का स्थान है और वात जो है निद्रा को डिस्टर्ब करने में प्रमुख कारण बन जाता है, तो उससे भी हमारी वात की शांति से हमें निद्रा अच्छी आती है। तीसरा है पादाभ्यंग, यानी अपने पैरों की मालिश करना, तलवों की, यदि आप सोने से पहले अपने तलवों की मालिश करते हैं इससे भी आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको नींद अच्छी आती है। तो इन सब प्रक्रियाओं से बिना औषध के भी नींद ला सकते हैं और अगर आपको औषध की आवश्यकता है तो अपने चिकित्सक की देखरेख में उपयोग करें।
1: जी हाँ, इसके साथ में प्राणायाम, ध्यान जी, आप ये भी अपना सकते हैं। क्योंकि सकारात्मक भावनाएं जो हैं वो काफी हद तक आपके जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं और जिसके कारण आपके जो नर्वाइन जो है वो एक जो कॉर्टिसोल लेवल स्ट्रेस के थ्रू आता है वो भी कम हो जाता है और नींद पूरी करेंगे तो साइटोकाइनिन जो आपके लिए जरूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वो भी पर्याप्त मिलता है। और एक तो देसी उपाय दादी नानी के जमाने से किया जा रहा है भाई, और वो है कि आप एक गिलास दूध, गर्म दूध रात में पीना चाहिए यदि आप डायबिटिक नहीं है तो गुड़ के साथ, और यदि डायबिटिक है तो आप ऐसे ही ले सकते हैं, उसमें कई लोग कोई मुनक्के डालते हैं कुछ, तो ये एक प्रक्रिया जो है दूध पीने वाली है। बाकी डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पादाभ्यंग रात को सोने के पहले यदि किया जाए तो और बेहतर, और सबसे अच्छी बात है कि स्क्रीनिंग टाइम कम करिए और वो भी आप लोगों को सोने के पहले, ये मोबाइल है, टीवी है, इससे कम से कम आधे पौन घंटे या एक घंटे दूर रहें और फिर देखिए, थोड़ा खाने के बाद में वॉक जरूर करें, खाने के बाद तुरंत लेट न जाए, छोटी छोटी आते हैं। लेकिन आयुर्वेद में मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो नियमावली है और पूरी लिस्ट है, आप किसी भी चिकित्सक से पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ तो फॉलो करिए।
2: जी जी जी तो आज के रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के बारे में काफी कुछ जाना, और हमारे दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इम्यूनिटी बढ़ाने यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अहम जानकारियां दी। तो आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम नमो धन्वंतराय, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय।
0: धन्यवाद।
2: आशा करते हैं कि आज का रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ भी फीडबैक देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है health@gmail.com।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स मैं शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 6 देश नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि 2 बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन SSB के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफर तो काफी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट है, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें था। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, तो हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर DIG थे जो अभी IG हैं, और IPS संजय सर थे, वो पटना फ्रंटियर में थे। उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक, बहुत बता
0: जी। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पीलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत जबरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ

0: ऑपरेशन काफी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि चार नक्सली उसमें जी मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत खतरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुंचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुंचे नहीं तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ इसमें। जी जी जी।
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहां से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने डीआईजी महोदय, आईजी महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअलिटी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
1: जी
0: जी।
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाजा होगा कि ये कितना खतरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आजादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहां 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के एसटीएफ भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन तो। इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर
0: जी।
1: तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था,
1: जैसे
0: रिक्रूट करते थे नौजवान युवक को, भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको भला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
0: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजुरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है और उसमें आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
1: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
0: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
1: जी
0: एक, जी जी जी।
1: तो
0: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर बहुत जबरदस्त,
1: जी
0: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी।
1: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाजा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
0: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
1: खात्मा करें। जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
0: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सेट टीम हमारा था
1: जी,
0: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था। गोलियों को बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
1: क्या
0: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था
1: जी।

0: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते ना कि वो डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए।
1: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे। अच्छा। उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है
0: जी। जी, और दो बार आपको मिला है,
1: दो बार गैलेंट्री।
0: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया है कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश नंबर 1 रेडियो।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहां आप पहुंचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ। उसमें 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम, उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी

0: लेकर के आया, तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबका सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जिनको ये सौभाग्य SSB की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ SSB का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर, हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहां से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से BA ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने SSB ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहां से इंस्पिरेशन मिली, कहां से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में के देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके वो फॉर्म फिलअप किए
0: जी,
1: फिर
0: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने SSB ज्वाइन किया, फोर्स।
0: अच्छा।
1: ज्वाइन किया जी।
0: तो आपने स्कूलिंग के जमाने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
0: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
1: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सुलनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
0: अच्छा।
1: NDFE के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, वहाँ फिर NDFE के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ आसाम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
0: तो सर आपकी जो जी, एक तो SSB का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
1: हाँ
0: जी, इंडो भूटान। तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
1: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय असम जल रही थी NDFE का उससे।
0: अच्छा।
1: तो उसमें NDFE पर भी हम लोग काफी काम किए थे, हमारे बटालियन SSE बहुत अच्छा काम किए थे उसमें। उसमें NDFE कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नार्कोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, GD मतलब जनरल ड्यूटी
1: जी, GD मतलब जनरल ड्यूटी।
0: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीजें थी?
1: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
0: जी।
1: हाँ। और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
0: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने CTC सोलनबाड़ी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
1: सोलनबाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
0: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग।
1: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वही असम में ही पोस्टिंग हो गया।
0: तो 23 बटालियन असम में आपने शुरुआत? अच्छा।
1: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहां से शुरुआत।
0: अच्छा।
1: हुआ जी।
0: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
1: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोशाल
0: जी।
1: अच्छा।
0: जी। फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे?
1: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ, जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
0: अच्छा।
1: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी, वो रोटेट होके आ गई।
0: अच्छा।
1: असम में आ गई हॉली में जी।
0: ओके। तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड है?
1: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युक्सुम में मेरी पोस्टिंग हुई है।
0: अच्छा, एक चीज सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहां पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है,
1: जहां जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
0: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माओइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, 50, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
1: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे STF वगैरह भी लगी हुई थी
0: जी
1: जी। हाँ,
0: लेकिन तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें

0: आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
1: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, उस चीज को हम याद
0: अच्छा,
1: करते हैं
0: जी। तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
1: जी।
0: जी तो इसको आप सबसे ज्यादा याद रखते हैं
1: जी, क्योंकि इसे बहुत मेहनत करना पड़ा। टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज पर हम लोग डिस्कस करते, हर छोटे चीज से हर बड़े चीज में
0: जी।,
1: जी जी जी।
0: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
1: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
0: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
1: हाँ, इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज हो जाता है
0: जी, जी।
1: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहां जहां था, वहां ना कोई टेक्निकल गजट पहुंचना संभव था, ना कुछ पहुंचना, ना आदमी पहुंचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
0: सर हम एक चीज यहां जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
1: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
0: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
1: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
0: अप्लाई कर सकते हैं।
1: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
0: तो ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
1: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
0: जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड आरजे साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल आवर बिलवड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माय ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्टफेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से, जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशन के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए
1: जी। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने वो देश की सेवा नहीं कर सकते, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है, तो नजदीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक है उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
0: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी, अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार है ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी। ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिलके काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर के एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया ग्वालदम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीजें,
1: फोर्स से ही मैंने जी जी जी।
0: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का भी कोर्स किया है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये।
0: अच्छा,
1: कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे एसएसबी में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसे ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
0: अच्छा
1: खाना। और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है, कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर प्राधिकारी से नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है अच्छा। चलने से लेके हर चीज। और उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल अच्छा। से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी,
0: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
1: जी,
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके?
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी जी जी, जंगल
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरमेंट में अपने आपको ढालना होता है,
1: जंगल में रहना होता है, एक लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है,
0: अच्छा।
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है।
0: तो एक लीटर पानी में,
1: एक लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे,
1: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
0: अच्छा। तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब एक मंथ का होता है।
0: एक महीना?
1: जी जी जी जी।
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब आर्मी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सबका भी योगदान रहता है।
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
0: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा जी, भरे रखते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ एक लीटर पानी की बोतल।
1: जी जी जी हाँ, तो हो जाता है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा,
1: तो हाँ तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो हाँ, कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
0: अच्छा,
1: अचानक सब चीज होता है,
0: पहले से नहीं बताते?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके,
1: हाँ,
0: एक तरह से ड्रिल
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा,
1: कमजोरी
0: टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी। हाँ,
1: तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है,
0: मोटिवेटेड रखना।
1: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड, फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा टीम के रूप में उनको ढाला जाता है।
0: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहां भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कुछ भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जी हाँ। और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं
0: जी।
1: ऑपरेशन काफी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
0: जी
1: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे
0: जी। आपके आपके सर कोर्सेस तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेस किए हैं, रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है
1: जी जी जी जी।
0: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
1: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
0: अच्छा
1: करना है जी, उसके
0: अच्छा
1: उसके बारे में।
0: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सके, वो भी आपने किया हुआ है,
1: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना
0: जी जी,
1: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है
0: जी
1: जी।
0: सर ये जो अब जैसा हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
1: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो खतरनाक, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
0: तो आपको कैसा लगा?

0: आपने कैसे उसको किया?
1: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब एंजॉय ही किए।
0: अच्छा। जी सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं
1: जी,
0: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया। सर आपका कोई रिएक्शन?
1: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
0: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बंगाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
1: जय हिंद आपको भी।
0: आपके सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचरस और इतनी जोश से भरी हुई कहानी हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में। मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए, जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही, और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपने उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर, ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफरेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा।
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरियंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब भी मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है।

0: आलम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए, आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहां काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए। मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज। इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीश पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं। सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके एसएसबी में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। यह है सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुंचाएं अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सल्यूट करती हूं, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए।

0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहें रेनबो दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाईची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits.
1: Bharat-Japan sambandh waqai bahut special hai. Hamari economic partnership ki safalta ke kai ujjwal udaharan hai. Abhi humne Haryana ke Kharkhoda mein मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया. आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है.
2: Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanai Takaichi, in New Delhi. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, mutual trust is the biggest asset in today's time and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
3: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense, and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. Addressing the Indo-Japan Strategic Dialogue on Shaping the Asian Century organized by a private television channel, Mr. Goyal said, opportunities are opening up for India's skilled workforce while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
4: It's a partnership that has many dimensions. Trade also is an important element of this partnership, particularly given our complementary strengths. What we get from Japan are largely technology-driven products. What we sell to Japan are also value-added products. We are not selling raw materials or intermediates. We are selling high-quality precision-engineered material, auto component, electronic component. So, in effect, this particular relationship has both the trade and investment dimension. Therefore, I think it's a good partnership.
3: India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, a terrorist is a terrorist, and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
5: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
3: Governor of Bihar, Lieutenant General Retired Sayyed Atta Hasnain, and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran tomorrow to attend the funeral ceremony of the late Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayyed Ali Khamenei. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, and some parts of Rajasthan. And that is the end of this news bulletin.
0: প্ৰিয় শ্ৰোতা, বাতৰিৰ পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম এফৰ 99.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টছত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টছত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছো কংকনা দাসৰ কণ্ঠৰ দুটি বৰগীত।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্ৰতি বাৰ্তাঃ শ্ৰূয়ন্তাম প্ৰবাচকঃ যতীন শৰ্মা। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा सानेता काइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मंत्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा औषध कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन 2002 परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा औषध रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमंत्रिणा सानेता काइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं सञ्जातम्।
2: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
1: जापान देशस्य प्रधानमंत्री सानेता काइची इत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमंत्री रूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विक पटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंचं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं संकल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता रक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखांकितं यत् वर्तमानसमये समग्रं विश्वं आपूर्ति श्रृंखलावरोधैः व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रांतरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत् तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां सुशासने व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री साने ताकाइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदास्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्तरूपेण उद्घाटनं कृतम्।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई

0: संयुक्त राष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधि रणनीतेः नवम समीक्षायां या च चत्वारिंशदधिकैकशतं मतैः अंगीकृता तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिमरूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदद्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते द्वाविंशत्यधिक अष्टशतोत्तर चतुस्सहस्र तीर्थयात्रिणां प्रथम समूहं जम्मू नगरस्य भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविरात् विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्र यात्रायां भागग्रहणाय जम्मू नगरम् आगच्छन्तः सन्ति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूति वीबीजी रामजी अधिनियम विंशति पंचविंशति आजीविका सुनिश्चितताया ग्रामीणाजीविकाया सुदृढ़ीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति। अद्य नैऋत्य प्रावृट्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे गुजरातस्य केषुचित् भागेषु उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु मध्यप्रदेशस्य अधिकांश भागेषु हरियाणा पंजाब प्रदेशयोः राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रे प्रवर्धितः। राष्ट्रिय राजधान्यां निम्नवृष्ट्या उष्ण आर्द्रस्थित्यां न्यूनता आगता। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिकादेशः द्व्यधिकद्विसहस्रतम वर्षानन्तरं प्रथमवारं नॉकआउट चरणे विजयं पञ्जीकृतवान्। बोस्निया हर्जेगोविना देशौ 2-0 पराजितवान्। बेल्जियम देशः अपि सेनेगल देशस्य उपरि अतिरिक्त समयस्य विजयेन राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
1: প্ৰিয় শ্ৰোতা, বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 99.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু ডিআৰএম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছো দুটি আধুনিক গীত।

0: ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई

0: प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई।

0: पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार

0: और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता